फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे केसो फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे भजन ना पायो।

बाल भय भूरे गर्व भय चूरे अब का करे लाल। बाल भय भूरे गर्व भौ चूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हड्डी।

अवध पुरी रघुवंश में फूटी के कई सीजा रानी। अवध पुरी रघुवंश में

मनते भजलो रे हरी, तनते भजलो रे हरी, राम नाम है जग में।

उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सा तो मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी राम नाम है जग में।

भजन करो हरि जगत करतार, भजन करो हरि जगत।

करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली।

0: अरे
1: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। ओ जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
2: महाराज गुगली की जय।
3: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
2: पेश है शाही पकवान।
3: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
4: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
5: कुछ करिए मंत्री चमकी।
6: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोई से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोई।
7: अरे मंत्री चमकी, आप
6: बताओ रसोई, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
7: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
6: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
7: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
6: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
1: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल

0: सलमान की तरह और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज जुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
0: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
0: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
0: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
3: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
4: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
2: भाई वाह,
5: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
4: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। ये बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा, हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए।

0: चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
1: कोगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
2: तैयार।
1: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगली, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
0: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
1: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
0: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है।
2: समझ गया, ये है गाजर।
1: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ?
0: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
1: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
0: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान।
2: आ गया समझ। चमकी, मैं बताऊँ?
1: अरे गुगी, अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
2: चमकी, अब तो जवाब बताने दो।
1: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब।
0: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
1: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
2: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला, केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार, आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
3: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
4: अब्दुल रहमान।
3: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
4: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
3: ओ, और आपके गाँव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियाँ होती है?
4: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियाँ जैसे लौकी है।
3: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
5: मेरा नाम शांति है।
3: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती?
5: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
3: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
5: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
3: अरे, मेरे गुड़गांव के दोस्तों कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
6: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
3: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
6: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता,

0: सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
1: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
2: पालक।
1: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
2: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियां कैसे खिलाती है?
3: मैं वैष्णवी को पालक कहानियां सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियां खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
0: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। पर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय
4: बाय।
5: मजा आया ना।

0: तो दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था, यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है भाई, हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी, मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है, जैसे तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं, तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं। और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते।
1: तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हमारी हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे?
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है, तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं तो, कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनेबे बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करत हेंगे। हम तो हेंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत ये दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानत हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होत हैगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें वो जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के वो जगह पे पहुंच गए। और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो यू के बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चलत हेंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन

0: ऐतिहासिक का रहस्य है गो, उनके बारे में भी अपन और कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करा थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी, काहे के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

सुबह और मिल चैन धसान, जिनको पानी सुधा समान, पर्वत जंगल आलीशान।

कौशल्या की पदवी पाई, गोदी खेलत रहे रघुराई। रानी सुमर गणेशी बाई, कौशल्या की पदवी पाई, गोदी खेलत रहे रघुराई। प्रेम भाव के भूखे भगवन, प्रेम भाव के भूखे भगवन, वीरन तज पाठन अपनो प्यारो बुंदेलखन। प्रेम भाव के भूखे भगवन, वीरन तज पाठन अपनो प्यारो बुंदेलखन। भारत माता को हृदय दोहे, जीपे

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोकगीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओ, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
2: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुम देव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तुझे मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट नौ दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए। तो माँ का मुख निकला हुआ है, माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है। जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहीं, और जन्म कोटि अघनासे हूँ तबहीं। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ, जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं, और यहाँ भक्त और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी जी अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं, और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रख रखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पे 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया, और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
2: पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
2: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए, आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपका शुभ नाम क्या है दादाजी?
3: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप उन्हें तय के हो?
3: यही के।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करते यहाँ जन्म लेके ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
3: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं। देवी जी की उनकी कृपा से हमारा सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
3: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
3: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखे, और बहुत बड़ा है मंदिर। उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
3: हाँ, बहुत बढ़िया है।
4: तो साथियों, अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सो सुनते हैं एक और लोक गीत धनकुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गाँव की कोई विशेषता है, आपके गाँव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-1417-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9425-1417-26। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुना थे कहानी को, ले थे कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुआ के राजन के कुंवर
2: आओ
1: और एक हते बानिया के लड़का।
2: अच्छा, मतलब एक हते राजा के कुंवर,
1: एक हते बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ,
1: अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती।
2: हाँ,
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम का, तो के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबह को चले जावे।
2: दो ही के दो,
1: दो ही के दो शिकार भी अपना घोरो मस्के, भी अपना घोरो मस्के।
2: हाँ,
1: अब जब वन में पहुँच गए
2: तो
1: जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुँच गए। अब कल को दिन बर्फी तुम्हें फिर कर गया।
2: अच्छा,
1: कल के दिन में भी बोले बोले कर ले बीरन बोले। अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल है। अब राजन को तो बस बीरन हते अपने बानिया कितने से कद बीरन।
2: अच्छा,
1: हो भी है बादशाह, बीजन और बादशाह दोनों जने हो। कह के राजा हो बादशाह, तो बस बीजन ने जिसे बार मार बनवाए, दाढ़ी फाड़ी बनवाई, बार फटवाए, कले कबैया कहाँ की रानी छत रहे, कले ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब जब नाव घे गो से नाव खो रख पतो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या थे।
2: जा सही कही आप,
1: नाव को सब पतो है।
2: हाँ,
1: तो नाव को तो राजन की कुमार की ससुराल को पतो
2: ऐसा।
1: सो बस अब बीरन के बार बन गए।
2: हाँ,
1: अब राजन के बादशाह के बनने।
2: हाँ,
1: तो बादशाह के बार बने।
2: हाँ,
1: तो बादशाह बोले बोले कर ले काय सताएगा का बोले कर ले कही राजन के राजा।
2: हाँ,
1: बोले कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है। हमारा हम किसे चले जावे। अरे बोली कर ले राजन के राजा, आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे काऊ की है ही नहीं है।
2: अच्छा,
1: तो बस बोली कर ले अच्छी। सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा,
1: के नाव होगा बादशाह होगा बीजन हो गए। अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस अब चलिए ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी, सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीरन की ससुराल को गल गई और जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
2: अच्छा,
1: गली में से बटी लगी, उन्हें लगी प्यास। तो राजन ने हुक्म ढीलो, चलो बीरन पिया पानी। बीजन गौ पानी पीवे के लाने, सुबह ने बीजक बाँचो।
2: अच्छा,
1: बीजक बाँचो बाद में सुबह में गलियां अलग अलग। बीजन हो बदमाश, बीजन बदमाश हो।
2: अच्छा,
1: तो बीजन ने कहा करो किस्ता के पानी पी के बाउली में वो वह बीजक को भरा दो।
2: ले उसका,
1: अगर हमारे अगर जब बीजक को जो राजा पानी पीवे आ रहा तो जब बाँचे ले संग छूट गो। इसे के हमारे ससुराल
2: चलेंगे
1: तीनों जने।
2: तीनों जने
1: जा पे बीजन बदमाशी के रहवा। सुबह सब राजा पानी पीवे गए। तो राजा ने पानी पियो जो तमाम भावरी में हेरी, सुबह में बीजक में गिराव लगो। तो राजन ने अपने खोबन की उली चुली के बाय
2: धुलाओ
1: धुलाओ और फिर उगे बाँचो। बाँचो बाय सुबह ने उनमें

0: प्रधान पूरा लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई और जा वीरन के कुमार को रास्ता गई।
1: हाँ
0: दोनों जने तो वो लिख ले क्यों वे वीरन बोले कहिए राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कल्ले पुरखन को बीजक तेने मिटा दिया है हट कर ले कि हम अपनी ससुराल जाते हैं बोले कल्ले उनकी शर्तें लग गई।
1: अच्छा
0: बोले कल्ले जो पहले आज विदा करा के वो जज बाउरी पे ठहरे क्या दिन कितने को बीत जाए
1: सही सही
0: तो बस बेटे सब भी अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कल्ले वो जी सुता जाका नाउ बोले कल्ले जी राजन के संगे चले
1: सही है
0: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी और हेल्पर चलते हैं तो राजन की कुमार और सताई का कद्दू जने जा रहे वीरन अपने सतारे चले गए। अब सब राजन के कुमार जा रहे जो बन कजली में पहुंचे तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास।
1: अच्छा
0: बोले कल्ले सताई का बोले कल्ले कि ये राजन के राजा कल्ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकले जा रहा है इसे पानी को देखो। बोले कर राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माए पानी अपन वन में हैंगे। बोले कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना उनका के बोले कर ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पर चढ़ी सुबह देख के भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब दिखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये उत्तर दिशा में बगली मर रहा है तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
1: बिल्कुल
0: तो बोले कल्ले राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर्रा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है पानी जरूर हो गया उसे। बोले कल्ले चल तो ले जा सुबह लोटा घड़ी ले आती अरे खुली जाए सुबह जन्म दया पाई खुली से जीत गए कि आना बाहर आराम से भी नगर चले गए तो उतर काकस्ता हाथों के जानवर लड़की राजन को भी आई थी वो नदिया में स्नान कर रही थी।
1: अच्छा
0: वो नदिया में स्नान कर रही थी तो सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कहना सुताई अक्का बोले कहना ये राजन के राजा बोले कल्ले उस तालाब में पानी है सो ठीक है तुम ले आए। बोले कल्ले महाराज जाके ना पूछो पानी पी लो तुम तो बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया हो ऐसा जल्दी हो थे कौन के मचो सचो भर के आवा। बोले कल्ले महाराज कल्ले वो तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सपर रही एक तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तुम तो सब मचो सचो भर लिया वो हम खुद की आस में मरी अरे बोले कल बगरा भी सुबह पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल्ले सुदायक का बोले कल्ले कहिए राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूरी जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करे अपन ताए को और मुंह करे ताला ताए को बोले कल्ले कहो उन्हें कही

0: नवकक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
0: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा उनने फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ढाड़ी जो
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: बा बोल रही है। हाँ।

0: अक्का बोले कल राजनी की राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल देना।
1: सही है
0: अभी से बोल देना बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ
0: हैं।
1: सही कही
0: बोले कल नहीं अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो भूले मोसा।

0: कलिया लेखो बाता दियो रे सो लगे काहू के अरे द्वारे जी। इन्हें गली बता दो सो काहू के द्वारे लगे
1: आप पहुंच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते अगर बता दीजिए। अब बस जल के भीतर हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए इनको बदन शरीर है कैसा। मुंह करने माइक हो और पूछ करें इंताइक हो कई के अब जाइए से बताया सुनने के बाद माँ से बोली

0: क्या बात मिल जाओ।
1: अच्छा
0: बाने मिली ना बताई न बाने बदन काड़ो जल नीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भी कर रही बस साहब उनने किसी गली तो पूछ ही ली गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ तो गांव की लाने तैयार हो गए। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी कर ली सफर और सफर खूर के और बाप ने गेल चली जो ये हती से जात है भवन द्वारे सत्य अक्का को देखो तो ससुराल सुबने द्वारे उनने अब पहुंची घरे सुख गई घरवाऊ को बंदो। अब भाभी से बोली भी

0: बिल्कुल, क्या अब तुम
1: दबावी ने कहा ऊंचे कंदीला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आ गए चाला।
0: अब लुबग्गुआ आ गए तुम
1: लुबग्गुआ। उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
0: ऐसा
1: भाभी से कही। सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बनाने के लाने तैयारी की। तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
0: अच्छा
1: बोले कर ले देखो अपन को कगुआ गेल कुमार बना की
0: बिल्कुल
1: अब भोजन नहीं करने भोजन नहीं करने इसकी यहाँ वाला थे जी
0: सही कह रहे
1: अब खुला खुला थे अब नहीं खुलो हमें तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की। सुबह सवती सुन व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के और आज्ञा दे दी भोजन के लाने तो दोनों जने भोजन खो गए भोजन खो गए साफ सुन ने चाहे एक लो चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बना ठना ना जवाब ठोको
0: अच्छा
1: ठोकनी ठोकने ना तो भेज कैसे खोले बाबू।
0: सही है।

0: सोन्नता थी सरकार के मोय कत्ती अब अभी खुल गओ के जई है जा
1: हां सही कह रहे हैं
0: जब जई है जब बाप बाबा ने बात खोली सो बोल समझ गए सो उनने माता थी माटी सरकार के ओ बस सुता जा काने पे झटपट जो कछु राजन के की जो बाप बांधी
1: हां
0: ओ बाप नी बांधी ओ बस चाची माटी जो कने कमे लगा के कने काहे काहे राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाज मैंने अपनी चाची धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं आऊं
1: हां जैसे टाइम लगता है
0: जैसे टाइम लगता
1: है हां
0: बोली कल सुन ले कल सुप्ता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हुए इस पापन को मिलवा जाने इसको मिलवा जाने तो बस दिया कि सो तैयार हो गए जहां से तरा उनको तो उन्हें भज्जा घूरो कसो सो अब रात में घूरो कसरा सो वो ऊपर को पने चवन पिटने कसता
1: अच्छा
0: वो पने चा पिटने के तने दिन तो गई आगे बढ़ गया
1: हां हां ये मैं भी दे रहे
0: थे ये भी दे रहे था ना क्योंकि कैसे
1: हां
0: सभी लोग आ जाए
1: हां
0: तो बस जो राजन को हां साहब कल भी हो गए तो राजा का कल क्या है जो ऊपर का पड़े क्या नीचे कस दिया जाए
1: हां
0: अच्छा कल तो उन्होंने भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास जंगल झाड़ी वाले निकल उठे तो बस बेहते सो अब आते बेसो निकल के और बस फिर कड़ी तो भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा दो बने रेशम डोरा पाटे कोरे जले दियो रे चाटे

0: देखो रिश्तेदारी है वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सू में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जाओ मैं
2: तो बस रुकते
1: नहीं गए
0: उनके रुक गए जो पड़ोस की
1: पड़ोस की ने कही जवाब
0: तो पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराओ तो केर बेर को संग है
1: सही है
0: बेर भर के जाओ तो उनने हकीसो जैसे कछु पुटिया पर मूत की वही रानास में ले गए
1: फिर मई खून पुटे पार ले गए
0: मई खून वही जहाँ उनकी राना सती फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन में है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन में ले जाए तो भोजन उनमें लगा थारी को भी पहुंची तो लगा थारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पहनी थी भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज की सुनकर मोर बोल गई बन गई और असम दोहा गह रही संत

اب باپ ننڈی سن رہی تھی بدوہا, تو ننڈی نے کہا خالی مانجا.

अरे भोर जी, अरे अबे नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलो ना मुझसे, नहीं कहीं बाने खरीदो हाँ जाकर।

0: मेरी कामनी। अरे खोलो कान, अरे किवार जी उन खोलो कंस के बार, लेकिन उनमें ना उठी कही के बार नहीं खुलगी,
1: के बार नहीं खुल।

अब जो जो है सुनो साधु जी, साधु ने सुनो दोहा, साधु कह रहा मन से शंख बजे सा दूजा

0: कहे जी उन्हें शंख बजे से साधु जगे बम घले रहे झूल। अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब कहे थे
1: सही है का हो रहा
0: का हो रहा
1: कत्ते दुनिया भगत जाए मेरे बीच फना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पता होगा कि रानी राजा के पास मिल भी गई। अब फिर की दोहा कह रही है ये सीता।

से लड़की भाली रे सो मेरी पे ब्याए जी। अरे ऐसी सासों का काम की हती तेरी कूखन बांझई हो जाती, और ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती। तो बोला ये तो गड़िया है ना यार, सुबह पटक थार जब थार पटक के में भागी आई सुबह अपने मेरे में। अब रात को समझ जब कहाँ जा रहा है जो सवेर हो सोने घूरो मस्को उस चली गई। सो ससुर साहब ने कही करी दीवान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी विदा कर खाना खाओ। खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उमें विदा उनकी कई गौ में खाना पीना सब और महीना भर के जाने रखा खा के घरे चले गई। बस अब बेहतीसु अब पीने हकावे बारे हकीसु जैसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भग के छोड़ गई। अब खुद उनने हकाई अब सुताई अक्काल कबाजी ने हकाई सुबह हका के वह सब कहीं ऐसी और चली होंगी। तो शाम हो गई से बमूरा को पीलो रहे से उतरे बस गए, शाम हो गई से बस गए। बस के में अब बोले कर ले सुनो सुता का बोले कर ले का कर ले पापन को नहीं छोड़ जाने यही रुकता है। अब बस सुन रही थी बस सुन रही थी सुबह ने गई के ठीक है सुबह सताई अक्का से गई के सताई अक्का ऑर्डर दौरा नहीं है के पति लगाओ। सताई अक्का गए से तीन पात्र ने लगाए एक अपन को एक राजन को एक रानी को। अबे ये तीन पात्र ने कहा खोल लिया बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर दिमाए रानी की फार के मार पातस लगती आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं इसे का करें जज्जे सुबह घोड़े की पछाई की जो एड़ थी एड़ बजट बार बडोर बजी थी सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाई बडोर को कि ये भगे तो जब एड़ टूटे समय यहाँ अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हमें इसे कचू के ले सुबह सुनने थी सुबह घोरो भंचाई रात भाई को बड़ा सुबह तनो वो तनी बार दूर कहीं दूर सो नीक चावा को अठो को घोरी में सुबह दूर सुनने कही होते रानी ने।

केने दिखती थर में बुझा गई हमें, हम ना जई गांव के रहे ना बई गांव के रहे, अब ये सुनर बारे कैसे चले गए। ये अपने भवन को चले गए और रानी ने अति सुबह पीना।

0: आदमेंगी
1: जा रहे
0: जा रहे सुवन्य भैया घर वन्य ना के टूपी माए की बोलन्या टूपी अती जो रानी वो तो मालिन हटी जो मालिन बोली बोली कर लेगा ये कौन कहाँ की पाप है आगे कहती है तुमने एक मोर रानी ने वो मालिन खुद दे बहु में भीतर कार में बाग में बीरा दे दे अभी तो राजन की बेटी तू तो कछु मोरन को कछु टूटो तो यही हटी हुई तो अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सही सही कछु बिलादना हो गए दुकान दुकान तो एक दिन अब उनकी बेटी हटी राजन की जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी को जमती जमती नाव तो बेटी को सो बिन बे फूलन की तुला तो लगती हुआ सो मालन रोजीना डाली लगावे और फूलन खून ले जावे सो राजन ने हकी सोची के अब मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमी आए सो बगीचा घूमन गए भी सोचे बार राजन की लड़की रहे तो राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो यह है नहीं है तो को राजा की लड़की सुबह जैसे कैसे अपने घर पहुंची घर पहुंचे सो घर पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ अब बादशाह ने हती सो राजन की पिया नहीं होती बाबे नहीं होता कंकुम अबे नहीं होता पिया रखो सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह की सो अपने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें परसों बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की सो बिन ने सोची अगर बिन तो हमारे खुलवा लिया उसी बन में ना छोड़िया उसी भाई ना करती हवा सोने हर सांस लगी सो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरकसा है राजन की बात में कोई खरकसा है सो नाव से पूछी जावा बोले क्यों खवास रखता बोले कले कहिए राजा कले कारण का है इको राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कले ये रानी को बन में छोड़िया सो उनने अति सो घोरो उनने सजो और बीजन ने सजो अब पहुंचे बोले कर ले चलो बताओ कि कौन छाड़ में छोड़ी फिर जो रुख तरह छोड़ी थी वही रुख तरह जीत गए दोनों जन नाव नहीं गए वे दो ही गए सो बोले कर ले अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धर ली सो मालन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद के बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही ठीक है उतिया जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन में गए सो उन्हें भैया मालिन ने उन्हें घर आए बोले कल क्यों रे कहाँ की हो परदेसी कैसी फिर रहे तुम जगह बाद वो हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा रहे हाँ सुबह आराम से मालिन को साड़ी तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है वो रंग महल में पहुंच गई राजा दिलंद की थी अरो कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही है तो कोई जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें ऊपर दिल ठाड़ी कही सो मालूम है कि राजन बोली कल दो घोड़े वाले आए और भी जाके और बहुत परेशान कर रहे उनने सब नाश करता बगीचा को सो उनने छड़िया के लिए तुमको राजा बुला रहे बोले कल जब तभी ऊंचे हटी बिल्कुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी ले के बोले उनकी गैल में सलाह हो गई बोले कल तुमसे बात करे से तो मूर काट लीजिए और हमसे बात करे तो हम मूर काट लें बोले ठीक है सुबह गए सो राजन की बगल में एक बोले बैठो बोले बैठो अब उन हटो एक बीजक राजा गिलन कि अगर जो बीजक जी लोग पहुंच गए हम लड़की की शादी

अब उन्हें किसो दसला हो गए बस सकाए से काम लगाओ ने अब रानी ने डीरा जाओ डीरा जाओ के देखो भाई राजा गिलानी ने जो बात खोब ली कि तो हमारी रानी बन जाओ बोली कल्ले नहीं ये राजा गिलंद को बाकट ही चल जी और जो मकान गिले चल जी सुबीर ने की तो ठीक है सुबीर से बन जाए जो काम लगो सुबीर अपनी मजूरी खोने की जावे जावे सो बार रानी जो बबीर की अति से छाजी पे हो दातन कर रही थी सुबीर जग लाई थी बबीर जग बबई लूटा आतन कर रखती दातन वो लूटा में लिखो है तो सुबह बबीर जग खो गए जो बात साल में बच गई बीरन बासले बासाल में बीरन ने बात की बोले कर ले ठीक है बोले कर ले क्या तुम तसला पटकत पटकत वो तो सार पांच ही की पड़ रही और तुमने पहचान नहीं करी कछु वक्त तुम ना तुम सानो हम ये डार है सुबह गए डार है सो आराम से गए डार भी के लाने से तने कुछ तसला में से गिला पहुंच वो इमेज दाओ बेटी में दवा में जो राजा गिलंत की लड़की तो उन्हें अति सो अब जो खिलाड़ी है तो उन्हें बोई लोटा दाओ बोई लोटा उनमें दाओ सुबह ने थल ये गेंद के बल्ला के अब ले लोटा हो गई बाद में सुबह सुनने फिर भेजो छड़ गया पकड़ लिया सुबह जब भी गए पकड़ा सुबह देख दाग के कल ये कौन मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर क्यों इनसे बोलत कैसे हैं बोली कल महाराज उठे नहीं है मंजूर संजू तो जो राजा पर बोली कल जा पर बोली पकड़ लिया बोली कल आ रहा है चलो अब बिने मिल गई थी वो बीजक वो बीजक उनने वहां से लौटे पूरो कर ये कब दो मिल रही दो मिल रही है सुबह के सो लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो बात गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट लो हमसे

0: बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने काशी राम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौ नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाव है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करें और सुने, और एक क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम की पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जू ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन का गाँव के सुन बताओ है, और अपन सज्जन ने सुनो है। अब अपन बात करते हैं राम गोपाल कुशवाहा जू से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कागे रे विवाह हो दादा?
2: क्या ना के पूरा पटो ग्राम केना जिला की गंगा कैसी नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे थे
2: ये हल्को हल्को काम कर अपने दो बच्चे देखे ना
1: और
2: वर्कर हम खराब किए काम वाम हम कहते नहीं।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाह तो
2: परिवार वाहन से कहते बेचार जब से तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा था कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगत और का परेशानी दिखते हैं आउती है अपन का
2: बुढ़ापे में? तो देखो ना खाना मुरात एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिराज हर एक बात की मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: अब वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहे तो भी हमें नहीं आया तो हम खा रहे
1: अपने अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी जाओ
2: आओ बैठ जाओ जी नहीं आओ थे तू सा थे।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते?
2: सेवा खुशामत सब करा चुनेंगे जनाब जी बैठे अब बैठे भी है तब जो लोग ठीक नहीं है चला फिर कर लेंगे तना
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: आप झेल सका मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खर्च तो ठीक ही है। अरे कछु न कछु न तो 10 रुपए दल उसको तो खर्च है ही आदमी को मान के चलो कछु न कछु वो 10 रुपए उठा के चल जाते हैं।
1: दिन भाई आपको कैसे कटा था?
2: मेरा ढोल बच्चे उनका दिमाग लगा ले सिगारे सिगारे

0: अपने थाने बैठे हो बस।
1: अच्छा वो अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं है ऐसी।
0: हाँ जी
1: हाँ, जैसे का आप अब बुढ़ापे की
0: बुढ़ापे मतलब
1: माना दिक्कत है आदमी का।
0: दिक्कत तो देखेगा नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी हैं दिखा कागज नहीं बांस पा मेरे दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो खावे पीवे की आपकी का है।
0: खावे पीवे की कोई तकलीफ नहीं आ रही मतलब जो घर में है तो खा रहा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में की में का अंतर है।
0: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना फेरी अरे पापा जी जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरे की जटाने बिना मिल गए दीवानी बिना मिल गए ऐसी समस्याएं मतलब अभी के समय में
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चाहिए अबे कि सब का
0: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति नहीं आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति नहीं आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
0: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में उबर का जो काम नहीं करा प्रेम में मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा टका खर्च ना उज्जे
0: हाँ घरे पैसा रे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा वो काम नहीं करना।
1: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाची और कैसे रहे चाची आपका कंचा सब जनन से आपको काके वो है
0: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात तो, बड़ी बात तो, मतलब शुरू से आप बताओ
0: यात्रा ना कछु
1: यही बात है आप यही बात पूछना चाहूंगा शुरू से बता दो आप आपका के वो चाहते
0: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान उनको माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं की रूप है जो बाप मताई को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो तेरी मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे।
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे निकलते होते जाकर जो मतलब है चले जाओ पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाते कहाँ जा रहा है रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है टेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
1: और का के वो चाहू था
0: जी चाहू के आराम चाहू बस मिल जावे टेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को सामान खाने दीवे तीन चार सौ महीना मिल गए तो अपने उम्र खर्च चलाओ
1: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखबे चारो धाम कर है। और भैया ये तो बातें अपनी अबे हती सो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हो को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताए तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाओ है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही है और शुभ संदेश की बातें कर रही है और संदेश दे रही है। तो भैया अपन सुनो सवई पंच भैया सुने।

0: हेलो,
1: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
0: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोग के पाए, ऊपर वाले के पाए, और बहुने वाने हो गई, पानी आने लग रहा हो।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो?
0: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
1: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
0: हाँ।
1: चलो ठीक है। अच्छा, गीत के बोल बता पाए आप?
0: एक गीत कोई गाओ सुना दीजिए थोड़ा।
1: चलो
0: बोल तो, हाँ बोल, याद नहीं आ रहा है।
1: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनवाए।
0: ठीक है भैया, जय राम जी की।
1: जय श्री राम, जय श्री राम।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमाचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का।

नादिया भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार।

कहना है कि मांग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छवि मुख चंद बिरा

0: बोले शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: हेलो बुंदेल खान नंबर 10 नंबर 4 साल।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाऊ से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है?
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी,
1: नमस्ते।

0: माताजी भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुनवा दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुनवा दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवाते हैं।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हाँ साथी, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

कार्यक्रम मेरी मुंडली मेरे बीच से अपने दोस्त माता दिन खुद जाने की अनुमति साथियों अपने तपने फिर हुई है मुलाकात एक डेरा पे एक कार्यक्रम में जब तक के लाने नमस्कार।

गलियों गलियों फिरता हूँ। कब से? जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: जे देवी हैं तो हम भी पुजारी से कम नहीं है। और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और काय ना
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ
0: और

0: विनय कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे भूल लगो बताए कैसे, यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जब सत्य कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना
0: कल

कृष्णा, कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे, जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम फ़ोन एंड व्हाट्सएप कार्यक्रम में। और फरमाइशी कार्यक्रम का वक्त हो चुका है और एक और साथी हमारे जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं सर?
1: परम आदरणीय मनीष भैया जी, सादर सत्प्रेम प्यार नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रीराधासी की मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय मनीष भैया से वार्तालाप कर रहा हूँ बुंदेलखंड ओरछा के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज फरमाइशी कार्यक्रम में?
1: बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सावन को आने दो।
0: गीत के बोल क्या है सर?
1: यशोदास साहब ने गीत को गाया है। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बहुत ही सुंदर प्यारा गीत।
0: तुझे देख कर का सर, तुझे देख कर
1: जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा,
0: जग वाले पर
1: जी, तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। यशोदास साहब ने गीत गाया है सावन को आने दो।
0: ठीक है, आइए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
2: इंडियाज़ फेवरेट बिजनेस सॉफ्टवेयर।
1: हृदय से धन्यवाद, ये प्यारा सा खूबसूरत गीत है। आड़ी महेश भैया जी, वर्षा दीदी और साथ माता जी जी को समर्पित करते हुए समस्त बुंदेलखंड ओरछा परिवार के साथ साथ जो सुन रहे हैं श्रोता उन्हें भी समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत सर।
1: धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गीताराम बोलते डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र। कैसे हैं सर आप?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर?
1: हम भी अच्छे सुरक्षित है। अपने बुंदेलखंड के कार्यक्रम शानदार बारदार दर्जेदार होते हैं सर, मुझे बहुत बहुत पसंद है सर।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं हमें भी बहुत खुशी मिलती।
1: जी सर, जी सर, आज के प्रोग्राम में मुझे गाना सुनना है सलम देव पा चूड़ी मजे आने देंगी कंगन मत आने देगा, ये गाना सुनना है सर मुझे।
0: बिल्कुल साहब, आपको हम सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत सर।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जांगड़े जी छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं
1: जी।
0: कैसे हैं सर आप?
1: बढ़िया हैं, अच्छे हैं
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे फरमाइशी कार्यक्रम में?
1: फिर धड़कन से सुनवा देंगे टाइटल।
0: धड़कन का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: टाइटल सॉन्ग तुम दिल की धड़कन में रहते हो।
0: तुम दिल की धड़कन में रहते हो
1: जी।
0: बहुत बढ़िया। और सब बढ़िया है?
1: बाकी सब ठीक है।
0: सब बढ़िया। वहाँ पे गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है यहाँ पर भी।
0: अच्छा
1: हाँ जी,
0: चलिए
1: जी। धन्यवाद।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: अनूप राजपूत, ग्राम प्रकाश, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बोल रहे हैं सर।
0: जी सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है सर।
0: क्या क्या चल रहा है आपके यहाँ?
1: कुछ नहीं है, अभी गाँव में थे वो बैठे थे दोस्तों के साथ।
0: अच्छा, सभी दोस्तों के साथ बैठे?
1: हाँ।
0: तो बस किसको सुनाना चाह रहे हैं, कौन सा गीत सुनाना चाह रहे हैं? और
1: तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे,
0: तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। दूध का कर्ज मूवी 1990 में ये फिल्म आई हुई थी, मोहम्मद रफ अजीज साहब ने इस गीत को लिखा है।
1: हाँ।
0: सुनवाते हैं इस प्यारे से गीत को।
1: नमस्कार। नमस्कार।

0: हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: जी हेलो नमस्कार जयराम जी की भैया जी राम राम जी।
0: राम राम, कौन बोल रहे हैं साहब?
1: मैं बलवान सिंह यादव ग्राम उपरेखा तहसील सरीला जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बोल रहा हूँ भैया जी।
0: जी कैसे हैं सर?
1: हम तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त भी हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम का।
0: चलिए बताइए कौन सा गीत सुनोगे?
1: आज गीत सुनवा दीजिए भैया जी, डफली वाले डफली बजा।
0: ढपली वाले ढपली बजा।
1: हाँ जी,
0: अच्छा, और सब बढ़िया?
1: और सब बढ़िया एकदम, सब चकाचक के। जी
0: चलो आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का जो गीत।
1: जी जयराम जी की भैया जी।

0: हेलो।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
0: नमस्कार मनीष भैया, नमस्कार
1: क्या हाल चाल है दीनदयाल जी?
0: भैया। भैया आपका कार्यक्रम चल रहा है, हमने ये मौका पर चौका गांध लिया है, हमारा नंबर आ रहा है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सही समय पे आपने कॉल लगाया है। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
0: मनीष भैया एक गीत है, आपसे हम बिछड़े हुए बहुत।
1: आपसे हम बिछड़े हुए।
0: हाँ ऐसा गीत है, हमने के बस आप भी बहुत दिल ले आई तो हमने भी दिल गाना सुन लो जाए।
1: अच्छा,
0: जी
1: बढ़िया
0: बिल्कुल
1: बढ़िया, बहुत पुराना गीत है ये।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
1: चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
0: नमस्कार।
1: क्या करें क्या ना करें,

0: जोकर बनाओ जोकर।
1: Create edited images like magic with Canva AI. Canva will say design tak.
2: आपके बच्चे दाल चावल खा के बड़े हुए होंगे, हमारे तो बताशा और बालूशाही खा के बड़े हुए हैं।

0: बता दू? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: नमस्कार दोस्तों।
1: नाम के बड़े आसरी आलसी और तुम्हारी मती गई बोराई। राम नाम के बड़े आलसी गई मती बोराई।
2: अगर आप राम नाम के आलसी हैं तो समझ लो कि आपकी मती बोरा गई।
1: देखो कहने को मतलब कवि जी को का है कि जो काम तुम्हें करने,
2: बिल्कुल
1: जो कर्तव्य तुम्हें करने, अगर वो पग से समझे,
2: सही कह,
1: अगर वो पग से अपन तनके ही विचलित हो गए, ठीक है ना, तो फिर वह मती जो अपनी बोरा गई वह फिर अपने लाने एक भैया बहुत ही खराब
2: बिल्कुल
1: का है कि जिते जोन अपन खा जिस जगह जाने हैं तो उते अपन फिर ना पहुंचे।
2: सही कह रहे, सही कह रहे। और सुनो तो कबीर जी लिख रहे कि आप भूले काहे में रख जावा, तो ने एक बहुत बड़ी बात लिखी, दुनिया दौलते माल खजाना। देखो ये कह रहे कि ये दुनिया है जा दौलत में माल खजाने में और बदिया बैल उगाई में,
1: भैया
2: भी दे रहा आप
1: काग है जो भी देख रहे कि दुनिया दौलते माल खजाना। अरे जो संसार है, जो भाव सागर है, हर आदमी का है,
2: यही में भी दो
1: हाय पैसा हाय माल खजानो और कागज जांगा की बनजी हमारी जा सो बीघा की बन जा है, जे हमारे
2: बैल हैं
1: और जे बदिया हैं वो जे गंग में।
2: सही कह रहे,
1: एक ही लेन में बुक का बोले के जो कछुनन्या
2: हाँ तुम्हारा
1: कछुनन्या हम जानी माया
2: संग चलेगी।
1: अब ये कवि कह रहे हैं कि जब भैया बुढ़ापो आ गए और बुढ़ापे की सब कछु कर लो वरना कछु नहीं कर पाओ।
2: सही कह,
1: और फिर जो भी है कि उतने जब जान लगे तो फिर अब काके रहे हम तो जानते
2: कि माया संग चलेगी
1: है का जान लगे जब प्राण आखिरी पे कि हम जाना संग हम जाना काया संग चलेगी।
2: हम जानी माया संग चलेगी और सबई यहाँ रह जाई।
1: नहीं यहाँ जावा जब जानत आए कि जो अपन ने जो माया जोर जोर के धरे धरी है तो कहे के अपने संग चे जा, लेकिन ऐसो भैया कछु ही नहीं ऐसो
2: कछु नहीं
1: बिल्कुल कछु नहीं। भाई बंद और कुटुम्ब कबीला,
2: देखो कितनी बड़ी बात है।
1: अरे भाई बंद और कुटुम्ब कबीला काम ना आए कोई आए, देख रहे तुम, भाई बंद कुटुम्ब कबीला काम ना कोई आई,
2: खाए खोए भैया
1: देख रहे
2: तो अकेले जाने
1: उते तो
2: सब तही रह जाने, तही भाई तही बंधु तही कुटुम्ब तही कबीला सब कुछ तही रहने। तो कबीर भैया जी ने बहुत ही बढ़िया जब बात लिखी है कबीर दास जी ने के भाई बंधु कुटुम्ब कबीला काम न कौन आई, को काम नहीं आई है, इसे हरि नाम जपा कर भाई केवल संग के लाने। एक ही बात बताई उनने, ना तुम आओ दौलत ना माल खजानो ना कुटुम्ब ना कबीला ना भाई ना बंधु को संग नहीं जे, केवल संग जे है तो काजे है हरि नाम जपा कर भाई।
1: और संग देखो का सोचत रहे कि उनने जो कछु बताओ है अपन का और जो उनने मार्गदर्शन दाए है, लेकिन कछु ने कैसो के सुगा पड़ावन गन का तारी, सुगा पड़ावन गन का तारी और तारे गई मीराबाई।
2: बिल्कुल
1: उनने संगे जा भी कही कि जिन जिन भंजन ने जिन बेनन ने और जिन लोगन ने इनके आदर्श था चलो है वो जिनने मन लगा के या कोनो बात मानी है या कोनो कथा सुनी है तो वे तारे जात या वो मार्ग पे पहुंच जात। जैसे सुगा अरे पड़ावन गनका तर गई, अरे कितना काऊ ने भागवत या कोनो चीज सुनी तो सुन सुन के तर जात। और संगे मीरा भाई का जो लगन हती बावन की पूरी हो गई।
2: सही बात कह रहे हैं। और एक के संगे संगे कबीर जी ने और देखो कालिख रहे कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो कर गए सदन कसाई।
1: अरे भैया का बात है अपन ने देखो तो इतने नोने तरन एक शब्द कैसो नोनो आगा के तर गए तैन कसाई,
2: तर गए सदन कसाई। सदन कसाई की कथा बहुत

0: कसाई है कि सदन कसाई का काम करते काशीराम भैया जी कि वे अपनो काहे के उनको काम हतो कि चोरी डकैती करके लूट माट काट करके और अपने घर को कम खर्च चलाउते। तो एक दफे की बात है कि जब वे लूट मार करके अपनो जो काम चलाउते घर के सभी सदस्यों को खुआते कमा कमा के, तो एक बेर भगवान जी उतर से निकले और भगवान जी ने कही की आदमी को एक अक्कल तो थोड़ी बहुत देना चाहिए कि जब तुम जो काम कर रहे गलत काम तो तुम्हारे ये गलत काम में तुम्हारे घर के भागीदार है कि नहीं है। तो भगवान जी उतर से निकले तो उन्हें कही के जिनने इस भगवान को थैला पत्रा सा फड़ा छुड़ू लाओ तो उन्हें कही के भैया तुम जो लूट मार काट करके कहा ले जा उनके अपने घर ले जा और अपने घर के परिवार को खुआओ पियाओ तो हमारे घर की आजीविका चल रही। सो इन्हें कही जा बताओ कि हम तुम्हें सब दे रहा हूँ चलो ले जाओ तुम, लेकिन तुम अपने घर जाके और जितने जनन को खुआओ पियाओ थे उन सबसे जा पूछो कि हम जा हाय हत्या को ले आ रहे मार काट करके ले आ रहे तुम्हारे हमारी पाप में भागीदारी हो के नहीं। सो भैया जी गए बोले यहाँ तुम भाग जाओ कहीं हम ना भागे तो हमें पेड़ से बांध दू। सो फिर वे बोले हाँ बांध दो। अब बांध के जे घर गए घर घर भाई से पूछी और सबसे लड़का बांध से पूछी कि काय भैया हो तुम्हारे जा बताओ कि हम जो हाय हत्या को ले आ रहे हम जो हाय हत्या को ले आ रहे हमारी पाप की भागीदारी तुम्हारे बनो के ना बने। तो घर वाले बोले हम काय के तुम्हारे पाप की भागीदारी बने तुम कर रहे पाप से तुम भोगी माता दीन भैया इतने तनक कछु बात का है कि उनके दिमाग में जो कसाई है तो वो उनके दिमाग में का हती कि जो जो घर है हमारो और जे जो मोड़ी मोड़ा है ये सब हमारे आए और ये सब मतलब जो कछु है तो ये कई माया जान लगती है कि हम जो काम कर रहे तो ये सब हमारे संगे जी और संग के हमारे भागी हैं तभी तो वो मार काट काट करके गलत काम करके लिया उसको
1: सही कह रहे
0: है। अब उनके दिमाग में काती भज्जा कि वो जानक नहीं है इनको परिणाम
1: का भुगतने
0: का भुगतने।
1: तो फिर एक बार फिर का भाव कि जब फिर उन्हें फिर छोड़ दो वो सब काम न मार काट करी न कछु करी
0: नहीं। तो उसे ऐसे का भाव कि जब भी पूछ भी आए वे पूछ भी आए कि काय भज्जा हो जो हम हाय हत्या हो जो मार रहे हो जो काट रहे और जो हमें जो पाप मिलने या जो हमें कीड़ा पड़े या जो हमें
1: सजा मिले
0: तो देखो सब जने खा रहे
1: आप सबको भोगने आए
0: काय भज्जा अपन का जो सब्जी भाजी लिया तो घर में सब जने खाते नहीं
1: बिल्कुल खा
0: अपन काम धंधो करके ले आए तो सब जने खाते नहीं
1: सही कह
0: रहे। लेकिन उन सदन कसाई को भी क्या वो सही है तो हम ले आ रहे तो जा बताओ
1: कि तुम्हारी के भागीदारी हो
0: इनके मतलब जो हमें लाभ मिले या जो हानि मिले या जो कुछ मिले तो क्या तुम इनकी भागीदारी हो कि नहीं। तो देखो भैया का जवाब मिलो सब जनन ने भैया
1: सब जनन ने यही कह रहे कि हम नहीं है भागीदारी।
0: तो उन्हें जब सब जन ने हाथ खड़े कह दे कि भैया काम तो तुम कर रहे तुम भोगो
1: जब फिर उन्हें कही के अब हम आज से बंद कर और बंद करके भी एक तला के किनारे एक बरिया के पेड़ के तरफ बैठ गए
0: बैठ गए।
1: सो उते काहे के एक में तलज्जा में पानी भरो तो सो एक आदमी लगाए रहतो ते का ढेकड़ी पानी पीवे खोते अलती डोंकियां सो डोंकियां के चक्कर में ढेकड़ी लगाए तो ते और तलज्जा में ढूर जाते पानी पीवे सोने के अलावा ढूर इतने पानी पीवे आए तो भी डोंकियां उड़ी जाती हमारी बार ढेकड़ी लगी सुबह छटक जाने ढोरण को पानी ना भिगन दे वो
0: अच्छा वो जो घेरे हैं तो वो पानी जो पानी घेरे हैं तो वो बिल्कुल
1: देर लाख भगा दे ढोरण
0: अरे भैया।
1: अब जब सदन कसाई ने देखो तो सबके मन में आए के इतने पाप करे तो एक और सही
0: अच्छा हमने की सौ सौ भी तो एक
1: भी सही भैया का भाव उन्हें जैसे भी ढोल भगाए से इन्हने भगा भी बाय में दस उगे वो कह रहा सब रुआन में पानी दम से पियो। अब जब उन्हें पानी पियो सो दही असी
0: आप देखो भैया कभू कभू का हो के दूसरे के परोपकार कर भी से तो भैया जो तो अपन जानते ही हो सभी जने जानते खुद को
1: जब उन पशुओं को पुण्य मिलो

0: आशीष जब मिलो
1: हर सांस लेके
0: हाँ जब सदन कसाई के सबरे पाप कट गए।
1: लेकिन भैया फिर
0: ऐसे कबीरदास जी ने कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधु
1: तर गए सदन कसाई और हरी जपा कर भाई जी हाँ। ये भैया

0: बिल्कुल
1: उस चीज को लाभ ना मिले, तो ऐसा ही है।
0: सही
1: आठवीं पे तो हम देखो कबीरदास जी का क्या है कि भैया एक काम करो, फिर वे उनने ये कहीं मन में अपनाओ।
0: हाँ
1: सदन कसाई जब उतरे से आए उनने कही जब भैया हम भैया को नहीं कर दे रहे संग न को दे रहे हो तो अब तो भजो रे भैया।
0: हाँ
1: अब उनके दिमाग में ये कही आ गई कि आप तो राम नाम भजो भजोरे भैया भजोरे भैया राम नाम गोविंद
0: हरि।
1: जब आदमी धक्का खा जाए
0: हाँ
1: तब आदमी चोट खा जाए
0: हाँ
1: तब आदमी की क्या कहना है समझ में आओ।
0: हाँ इसके समझ में आ गई है।
1: जब सदन कसाई का ये बात है अपने घर ही से शिक्षा मिल गई उन्हें
0: सही
1: जिन्हें भी मार मार के काट काट के ले जाते और उन्हें खबाऊ थे तो उन्हें भंजन ने का कह दी कि भैया तुम कर रहे हो तुम ही जान
0: हाँ तुम्हें भुगतो।
1: तो जब उनकी भी कुछ समझ में आ गई तो भी का फिर कबीरदास जी ने लिखो ऐसे लोगों की लाने के भज रे भैया राम गोविंदा हरि भज रे भजोरे भैया
0: हाँ
1: भजोरे भैया राम गोविंद हरि
0: सही कह रहे।
1: जब तप सघन कछु नहीं लागत जब तप सघन कछु नहीं लागत और खर्चन नहीं गठरी। देखो का कह रहे ना तो भैया ही में हमें कछु साधन चाने ना हमें कोनो
0: खर्चा जाने
1: खर्चा चाने और ना हमें ऐसी
0: पूर्व सही कह रहे हैं बहुत अच्छी बात लिख रहे
1: कि कितनी बढ़िया बात लिख रहे कि गठज्जा को मतलब के जब आदमी ज्यादा ही गठज्जा बांध ले
0: चाहे कोनो काम की हो सही कह रहे हैं
1: तो वो कहो कि गठज्जा तो बहुत बढ़ जाए
0: अच्छा उसको वजन धरे फिरने अब
1: और भैया काट अनाई काट लिख रहे कभी सतन सभ्य सुख करण जासो भूल पड़ो संतन सभ्यन सुख के करण जासे भूल पड़ो।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिख रहे
1: हाँ
0: कि संतन सम्यत संतन सम्यत सुख के कारण संतन सम्यत सुख के कारण जासो भूल पड़ी ओ कहत कबीर राम ने जासुख कहत कबीर राम ने जामुख तामुख धूल भरी
1: ताम जोन भी मुखते
0: हाँ
1: जोन कैसे मुखते और कैसे कैसे लेकिन उनको भैया पल और कर्तव्य और समय की कीमत है
0: बिल्कुल
1: जैसो तुम करो और एक दिन ऐसा होने के जो मुख धूल में
0: हाँ। मिल जाने
1: सही कह रहे मिल जाने के नहीं मिल जाने अब देखो अब कितनी अब कछु तुम सो कछु नहा लो
0: सही कह रहे
1: कैसे ही नहा लो या कछु लगा लो
0: सही कह रहे
1: लेकिन अपने ऊपर चादर तो चढ़ गई है जो अपनी काया है या
0: सही
1: अपन मल मल के कछु धो लो या कछु काम कर लो
0: बिल्कुल
1: जोन अपनी यह चादर है जोन अपनी यह खाल है जा तो पुरानी
0: हाँ कबीरदास जी बहुत अच्छी लिख रहा है बात को कि चादर हो गई बहुत पुरानी चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी अजब जुलाहे चादर बीनी अजब जुलाहे चादर बीनी सूत कर्म की तानी।
1: देखो भैया एक एक शब्द की का कह रहे कि चादर हो गई बहुत पुरानी अरे सोच लो मतलब जब चादर है जो जब बहुत पुरानी हो गई सोच लो और समझ लो
0: सही कह रहे
1: इतने कह रहा हूं मन घमंड में रहो
0: हाँ हाँ
1: कविता में उनने कितनी अच्छी हो गई चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ ओ भगवान
0: सही है
1: ये जो मन है जो भाव अपनी भावनाएं हैं जा इनके दिमाग और अंदर तो सोचो
0: सही कह रहा
1: है अंदर तो सोचो कि अजब जुलाए चादर भी नहीं
0: हाँ
1: अरे खो गई तुमने आओ में ताओ में और जैसे कछु बनो तो तुमने वो चादर का अपने हासिल कर लो कर ले के नहीं लेकिन सूत कलम की तानी जैसे उनने तकली जब सूतर काटत है तो काट काट में बिलाक हो जाता
0: हाँ।
1: एक एक सूत सूत कर करके जैसे अपन ने कहा बूंद बूंद से
0: हाँ भाई सही कह रहा इसे और आगे लिख रहे

0: सुराती नृत्य, सुराती नृत्य को भरना दीना तब सबके मनमाही।
1: देखो हाँ, जब सुरत है अपनी, जब जिज्ञासा है,
0: हाँ तो बिल्कुल
1: मन है,
0: सही कह रहे।
1: अरे इमें तो भरो कछु,
0: सही कह रहे,
1: ऐसी भरो के जो सबके मन को भाग।
0: हाँ,
1: जो सबके मनमानी, ऐसा तो नहीं है के तब सबके मनमानी। अरे ऐसो काम करें कि सबके मन में वो मनमानी ऐसो तो ना करो, बस तुम स्वयं अपनी इच्छा का वो स्वयं अपनो भंडार कर रहे, जो कुछ कर रहे, जो हमने कर रहे।
0: हाँ,
1: और जो तुम, अरे जो सबे अच्छो लगे वो काम खा,
0: सही अच्छे करो,
1: दे रहे उपदेश, दे रहे वो काम खा अपन करने हैं।
0: और का लिख रहे आगे कि मेले दाग पड़े पापन के,
1: भैया जे बात है, मेले दाग पड़े पापन के, विसरन में लिपटानो।
0: हाँ, विसरन में लिपटानो।
1: अरे ये जो जो कर्तव्य हो गए, जो कल है तो दाग लगाई गए,
0: बिल्कुल,
1: और तुम जो काम करिया है तो उसमें तो तुम लिपटे ही हो। जाना जानो कि हमने बढ़िया काम करके या खा के तुमने वो मुंह पोंछ लाओ तो हम हमारे भीतर का छूने नहीं। लेकिन जो कर्तव्य जो कर्म में तुमने कल लाओ तो उसमें तो तुम लिपटे ही गए,
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आगे का लिख रहे कि ज्ञान का सावन लाए ना धोया, ज्ञान को सावन लाए ना धोया, संत संगति के पानी है। हाँ, और भाई भाई खराब अब गई सारी, भाई खराब
1: अब गई सारी।
0: देखो
1: भाई खराब अब गई सारी और लाभ मोह में सानी। अरे बीच क्या कह रहे, क्या बातों अगर जो तुमने सोच ली तो वो जो समय कर गया वो तो खराब हो ही गई।
0: हाँ,
1: भाई खराब।
0: हाँ,
1: तो अब जो काम कर लो तुमने उसमें तो तुम सन ही गए।
0: हाँ, लोभ मोह में सानी,
1: जो जो लोभ मोह में तुम सन गए, जो जो चीज तुम्हारे दिमाग में है। हाँ, तो तुम सन गए, अब कछु नहीं हो।
0: और ऐसे ही उड़त उमर गमाई,
1: भैया जैसो तुम करो।
0: हाँ,
1: जैसो जैसो का तो उम्र तो कड़ाई रही,
0: बिल्कुल,
1: और तुम्हारे ऊपर वो कहता चढ़ रहा,
0: बिल्कुल। ऐसे ही उड़त उम्र गमाई, भली बुरी नहीं जानी, और शंका मानी जानी जिए अपने, शंका मन जानी जीने अपने, ये वस्तु बिरानी। जीने जा जान ले के जा वस्तु बहुत बिरानी है, जा अपनी नैया, अपन तो जितना है सो है, अपनी नैया जाका है। ठीक, तो कबीरदास जी बहुत अच्छी बात लिख रहे थे कि कहे कबीर यूं ही राख जतन से, कहे कबीर यूं राख जतन से, नहीं फिर हाथ ना आनी, अगर जो जीवन निकर गओ फिर हाथ आवे भाव नन्या।
1: देखो भैया काहे जी आज की कवितन में,
0: हाँ बिल्कुल,
1: और आज के इस ज्ञान में कबीरदास जी ने मार्गदर्शन बहुत अच्छा दे रहा
0: है। सही बात है
1: कि ना तो भैया अपन खा जा उम्र है जो खराब करने, और ना जो मोह है जो लोभ है, ना ही में अपन का सीधी सीधी बात है ज्यादा पन्ने,
0: बिल्कुल
1: है? और ऐसो काम नहीं करने कि जो अपनी उम्र में और अपनी जो शरीर है जो कर्तव्य है ई पे अपन खा लग जावे, और नाम इसे या ला जावे या अपने ऊपर नाम कम जा कह रही वो फलानो भैया ऐसो,
0: बिल्कुल सही बात कह रहे। तो देखो काशीराम भैया, अभी के संगे हम आपको जो बता देवे कि आज के कार्यक्रम से अपनो जावे को अब समय सो हो रहा है,
1: बिल्कुल भैया।
0: सो अपने साथियों से जो सुनवे वाले साथी है उनसे कहो चाहे कि ई कार्यक्रम में अगर जिते बात कंबड़ भई होवे या फिर सदन कसाई की बात कछु और होवे, और आप वो बात को जानत है कि सदन कसाई की जा कथा ई प्रकार से है, तो आप हमें जरूर बताएं। कह के अपन को उतेक अनुभव नैया सदन कसाई की कथा को, सो जो अपने सुनवे बाय साथी है वे जरूर अपन को बतावे।
1: भैया ई में जा बात नैया देखो गे गेरी गे उठली है।
0: हाँ,
1: अपनो काम है भैया, लो जितेक लो अपन जानत है।
0: हाँ हाँ,
1: उतेक लो अपन ने संदेश दे दो, और जो कार्यक्रम तो यही के लाने हैं कि भैया अपन का बताएं,
0: बिल्कुल,
1: और उन भैया को अपन बातन में शामिल करें।
0: हाँ हाँ,
1: और उनकी जो कविताएं हैं, जो उनके कहानियां हैं, जो किस्सा है वो अपन का भेज,
0: बिल्कुल।
1: तो भैया अपनो पतो और फोन नंबर बता दो।
0: जी हाँ काशीराम जी, भैया अपनो देखो पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा, और अपनो फोन नंबर है 94251417। अब एक संगे अपने दोस्त माता दीन को
1: और भैया काशीराम को दो आज्ञा
0: नमस्कार।
2: आजीविका जाने सुने और अपनाए।
3: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में, और आपके साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
4: और मनीष। कार्यक्रम लेकर आए हैं, और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर बातचीत करते हैं, और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हैं खेती में।
3: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि हमारे जब साथी किसानी तो करते ही हैं, लेकिन किसानी में किस तरह से वो एक व्यवसाय के तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हम फालतू रहते हैं घर में खेती का काम करके, या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
4: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच के बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है कि किस तरह से खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको ना जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
4: बिल्कुल, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं, क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है, लेकिन यदि व्यावसायिक तरीके से देखा जाए तो व्यावसायिक तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पर रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, और बहुत ज्यादा, चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम उसको बढ़िया पैकिंग करके बढ़िया दाल बनाकर उसकी पैकिंग बाजार में अपनी ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
3: तो सारी जानकारी आप यहीं बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
4: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे से मुलाकात आपको करवा रहे हैं जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
5: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है, मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ पर चूंकि दलहन उत्पादन बहुत होता है
6: जी,
5: इसके लिए उनको जो है दलहन में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारी जो है चीजें, तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आज के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है और बुंदेलखंड रीजन जो ये झांसी ललितपुर आपका जालौन ये एरिया है, ये खासकर मटर
6: जी,
5: चना
6: जी,
5: उर्द मूंग इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
6: जी,
5: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
6: जी,
5: तिल का तेल है
6: जी,
5: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाएं और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटें, जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, चूंकि एक उम्र में एक जाति एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है विचार मिलने की बात है
6: जी, जी।
5: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे,
6: बिल्कुल सर।
5: तो इसलिए उन विचार एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए
6: जी।
5: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
6: जी।
5: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है
6: जी।
5: तमाम साधन कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
7: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर?
5: इसे स्वरोजगार, जिसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
6: जी,
5: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके सर्व स्वावलंबन में आए
6: जी,
5: उस तहत में काम कर सकते हैं
6: जी।
5: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है,
6: बिल्कुल सर,
5: तो उसका हम उपयोग गांव में तमाम चीजें होती हैं
6: जी,
5: जैसे बेसन है
6: जी,
5: दलिया है
6: जी,
5: यहाँ बुंदेलखंड का कठिया गेहूं बहुत अच्छा है,
6: बिल्कुल सर।
5: तो किसान जो है के घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं बेरोजगार के लिए इधर उधर टहल रहे हैं रोजगार के लिए
6: जी,
5: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से द्वारा जो है जो 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती हैं, उसको ले ले और स्वयं से पैकिंग करें, उसका अपना जो है एक सोसाइटी बना लें, FIG या PO का डेवलपमेंट करें, फार्मर FIG जो है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप या PO होता है
6: जी,
5: तो उसके आधार पर काम कर लें और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए लोग उसमें जुड़ते जाए और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
7: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी। और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके की हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई ऐश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं, लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है?
5: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है, जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
6: जी।
5: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए गांव में लोगों को, इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाएं
6: जी।
5: जिसको कि गांव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है, युवा साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए
6: जी।
5: और जो चीजें हैं आज के युग में जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं
6: जी,
5: उसमें चीजें हैं हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश करती है लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनके घर में है,
6: घर में है, बिल्कुल।
5: अगर चावल की बिनाई कर ले, बाई बिनाई करके उसको पैकेटिंग कर ले, दाल जो है चना है चने की ग्रेडिंग कर ले, ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चने के रूप में यूज करे, सेकेंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में,
8: तो इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं
1: जी,
8: उनको मार्केट में जो है आगे आना चाहिए। जो दलाल है, ब्रोकर्स हैं, जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है, वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा। और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है आज के समय में। एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है। तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आंखें खोलने की जरूरत है। जहां चाह वहां राह की बात है, बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग, चूंकि 60% 70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
1: बिल्कुल सर,
8: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
7: बिल्कुल सही बात कही आपने। और चूंकि अगर सर बात कर रहे हैं इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर।
8: कोई चीज बिकती कब है? जब क्वालिटी होती, क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख ले
1: जी,
8: तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
1: बिल्कुल सर।
8: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
1: बिल्कुल सर।
8: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले आओगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती।
1: बिल्कुल सर।
8: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है। यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
1: बिल्कुल सर।
8: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, एमपी के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते है
1: जी।
8: अगर किया जाए इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है, तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है। अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं
1: जी।
8: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
1: जी।
8: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग दे बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं
1: जी
8: उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित, उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा।
7: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत अच्छी सर आपने बातचीत बताई है। और हमारे युवा साथियों को चलते चलते और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस, चूंकि दूसरी चीज सर आती है प्रशिक्षण की बात आती है, प्रशिक्षण में चूंकि अनुभव की कमी आती है कि किस तरीके से वो कार्य करें, और कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो अनुभव रहता है, दूसरा मार्केट रहता है, तो अनुभव की कमी आती है, तो उसमें आपकी क्या विचार है सर, किस क्या करना है?
8: उसके लिए तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सहयोग देने के लिए खड़ी हुई है। गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज तो भारत सरकार पूर्ण रूप से किसानों के लिए ही सारे योजनाएं सारे कार्यक्रम बना रही है। सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है और बाहर निकलने की जरूरत है। रोजगार युवा भाइयों, आपको पूरी जो है दुनिया आपकी है, आप मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा भी आप बुलंद कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करिए और डर के आगे जीत है, डर को अपने निकालिए और आगे बढ़िए।
7: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथियों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन साथियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं?
8: स्वयं का कार्य शुरू करिए, डर को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे, धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे और आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं। गवर्नमेंट से स्वरोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो।
7: बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
8: धन्यवाद।
4: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बहुत सही कहा है आपने। करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके एक पैकिंग करके मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो अब बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
4: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है यानी पैसा उपलब्ध कराती है, तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथी कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही है, यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
3: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहाँ पे कि हमें ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
4: तो साथियों अब हमारा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है। तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है
3: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओछा तिगेला के पास ओछा। आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। आप दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
4: और मनीष को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात, तब तक के लिए
3: नमस्कार।
4: और चल चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारी भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो देऊ करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते मतलब काया तुम बात कर रहा अपने साथ
1: नहीं, नहीं हमारी भी नमस्कार पहुंच जावे सभी श्रोता साथियों को काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है वो
0: हाँ, वो तुम्हारा है
1: नहीं
0: हमारी नहीं
1: हमारे युवा साथी ये सोचते हैंगे के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे
0: और हमें जानकारी देंगे। नहीं नहीं जो मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हमें अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गई की बात को तुम्हें बुरा लगा हुज्जे से तुम बीच में हमारी बात काटन लगे।
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होती है जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछते हैंगे कि भाई

0: साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव कर रहे को काय से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम हो, और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथियों ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी। अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम, हम तो होंगे ही कामयाब, लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो।
1: अरे बस बस बस बस मनीष भैया बस बस, बहुत ज्ञान देते हैं आप, इतनो ज्ञान जब बोलत हैंगे तो ऐसा लगत के तुम बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और बोलेत हुए। अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए हैं?
0: जो कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम, और जहाँ मैं अपन सुनते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा।
1: ये यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ।
0: हाँ, और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करवे जा रहे हैंगे,
1: हाँ।
0: तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी, बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते हैं व्यक्तित्व विकास जो रहते है, यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है, आप जैसे इंटरव्यू देवे जा रहा है तो आप हिचकिचाते होगे, कैसे बहुत ज्यादा समय लगा थे जी चीजन को सीखे में। यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो, तो नौकरियन में जी चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए, तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो, और तभी हम आगे बढ़ सके, तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: लेकिन जो तो बताओ अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे?
0: नहीं, हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं।
1: मतलब
0: हमारे बहन को एक फोन आ रहा है,
1: बता दो।
0: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी, बे का सलाह दे रही है, उनको सुना थे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे। एक चीज हम एक बारे में बतावा चाहते हैं,
1: फोन तो उठा लो पहला वो।
0: नहीं, हम बिल्कुल उठाए ले रहा है फोन, हम अपने साथी उनको बतावा चाहते हैंगे के व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझो, ये बहुत बड़ी चीज रहती है। जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैंगे तो वास्तव में जो सीख मिलत है उनके जो अनुभव रहेंगे उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहेगी।
1: अब फोन कटाओ, आप काय में से उठा रहे?
0: चलो हमारे संगे टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही है, चलो उनसे बतकाओ अपन कर लेते हैं तो उनके अनुभव को साझा कराते हैं।
1: तो बात तो हम ही करें, आप फोन ना करें।
0: चलो आप ही कर लो, रूपा जी को फोन है वो, आप ही बात।
1: हाँ ठीक है। हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते, रूपा रानीपुरा से, जिला टीकमगढ़ से। में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है, टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है, इसमें कपड़ा भी आए हुए तो कपड़ा की सिलाई चल रही है, सिलाई सीखेंगे अब।
1: अच्छा, यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं? तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है, कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या?
2: हाँ, जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था, वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा, वहाँ से फिर हम गांव में आ गए, रानीपुरा गांव में, वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला, तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे, फिर दो पैसे भी मिलने लगे
1: जी,
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते
1: हैं जी। तो रूपा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कैसे आपने उसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
2: हाँ, वैसे गांव के थे आदमी जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से
1: जी,
2: उनसे हमने संपर्क किया, तो फिर उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम, तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गांव में आ गए, तो बस ऐसे आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है
1: जी। तो आपने जब अप्लाई किया था वहाँ पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
2: नहीं, फ्री में सीखा।
1: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं लगे थे?
2: नहीं।
1: अच्छा, तो रूपा जी आप इससे पहले सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
2: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हैं, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठी है ठाली घर में।
1: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे

0: क्या फायदा होगा?
1: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें 2 पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर ना जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे, और बस 2 पैसे मिले, हमें 2 पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर ना कहीं जाना पड़े।
0: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना चाह देंगे कि अभी जो आप काम कर रही हैं इसमें आपको कितना क्या मुनाफा जिसको कहते हैं कैसे हो जाता है?
1: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिली हुई है, दिन में 1-2 बिलो सिले तो बन जाते हैं, 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
0: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ जो खर्चे होते हैं थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे? अच्छा, आगे
1: बता रहे
0: बढ़ाएंगे।
1: थे, हाँ,
0: जी बिल्कुल,
1: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
1: ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है, अभी तो ऐसी पुराने चीज थी ना, उन्हें सिलाए, जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़ा आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे, उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए थी, काट के दिए थे उन्होंने।
0: जी, कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
1: इसमें वही लोग हमें देते हैं कपड़ा, तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देती है, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, पर झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए कपड़े?
1: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या
1: नहीं है,
0: लड़कियां?
1: 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
1: हाँ, समूह वाले भी हैं, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी, बहुत बढ़िया, आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी, बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया तो क्या क्या परेशानी आपको आई, क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
1: परेशानी तो आती है वर्षा दीदी,
0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके, के हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं,
0: जी
1: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है, इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें,
0: जी
1: कल कल जाके हम बाजार में ले तो सकें, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते।
1: नहीं ले सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना, ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब,
0: जी
1: तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई, हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने कि
0: जी
1: ये चीज क्या है, तो
0: जी
1: हमें जानकारी हुई।
0: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर
1: नहीं,
0: इससे
1: एक
0: ज्यादा
1: महीने
0: समय
1: में तो
0: लगा?
1: नहीं किया अभी, नहीं, 1 महीने में नहीं हमने किया,
0: जी
1: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी, अब कितने फिलहाल हमने 1 महीने, 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए,

0: महीने गुजर गए।
1: अच्छा, 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
0: हाँ, वैसे सलवार है, कुर्ती है, ब्लाउज है,
1: ये चीजें आप बना लेती हैं।
0: हाँ, ये 2-3 चीजें बना लेते हैं।
1: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
0: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
1: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आएं और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
0: नहीं, अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
1: अच्छा,
0: तो अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर होगा, टेलर घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी। इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हो उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
0: हाँ, पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी, तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था, तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिल के रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बरसती जी एक बात और बता कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे ना बढ़ पे? अगर घर ही में है ना इंसान, तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता, ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे होंगे
1: जी,
0: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है, इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब अच्छी जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
1: जी बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि महिलाएं, बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
0: नहीं, बस ये बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
1: जी, तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
0: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम समझा रहे हैं, आगे हमें पढ़ाओ ताकि हम 2 पैसे कमा सकें, हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं गांव छोड़।
1: जी जी बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गाँव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती है, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गाँव में रहकर ही कर सकती है, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती है।
0: लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है, तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
1: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं, तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाए, ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए, ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं,
0: कुछ भी कर सकती है, इसीलिए सोच रहे हैं। लेकिन गलत सोच है बरसावन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ ना जाए आगे, यहीं की यहीं रह जाए, सोच गलत है, आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
1: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती है, बसरते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
0: उनके लिए बस यही, कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा है, बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे, लड़का लड़की कहते हैं लड़का लड़की एक समान
1: जी
0: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
1: जी बिल्कुल रूपा जी,
0: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई, तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
1: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही एक खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दे ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छी बात, धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: काय बार साहब, तुम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दिया। आपको शायद हमें देखा पहले से बिल्कुल पता हो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं।
1: बताए
2: हम सोच ही रहते हम हमें आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो रहे हैं उनके कैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो उसके लाने ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ा थे, उसके नाना मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई है और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनो परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। वाह, धन्यवाद।
1: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी, जा हैगी कि अपन और सीख तो ले थेंगे। मतलब जैसे कहता हूँ सुनी क्या रे वो ते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना, सीख भी बहुत है ना। नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहते है, सो चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते, जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाते। तो काहे कि रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो आरसीटी सेंटर चला थे वो उनके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी। लेकिन अगर बात करें कि उनको कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो कैबी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उनको जरूर सीखो। क्योंकि आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो, महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते ही हैंगे और सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते है वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छा लगा है तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काया अटकती। हम तो कहते आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जी मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हैं और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते हैं। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
2: अरे ज्ञान की देवी, अब तो नक रुक जाओ और हमारे साथियों को तनक सांस लेन दो और जो लोग गीत सुनन दो उनको, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी। तो हमारे साथी कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे।
1: हाँ, मतलब तुम तो मैं बोलन दो सो कछु नहीं है,
2: नहीं,
1: तुम
2: नहीं,
1: बोला
2: अपन एक बढ़िया अपन भी थोड़ो विराम ले लेते हैंगे और अपन सुनवात हैं अपने श्रोता साथियों को जो नौ नौ सो गजल खो, अपन गजल खो सुनेंगे और गजल के बाद साथी रहो फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम, हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल खुन सुन रहे थे, और अब हमें लगा थे गो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम ही दे सका थोगे, कहे गया हम बोले सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे,
0: नहीं
1: साथी अनखों बस पूछो चाह रहेंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहेंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैंगे, कैसे है? जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसा मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकत हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकत हैंगे। तो अपन ये चीजें आपको बता देंगे, जो बातें आपको बता देंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है गो, जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है गो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है गो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं।
0: बिल्कुल यही प्रकार है, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो उनके लाने हमारा नंबर जो है वो।
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में कहीं नहीं बताओ। और
1: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास
0: जानत है?
1: नहीं नहीं जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहतेंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहां पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाने हैं वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड को लोगो उपलब्ध पाओगे, बाको डाउनलोड करो और चाँद जिते बैठ के, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चांद उन छिड़िया में बैठ के सुन सका थेंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखो सुन सका थेंगे।
0: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने, आप डाउनलोड जरूर करबे ऐप। काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जैसी शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेवे रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सकते हैं सुबेरे 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो, काहे कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।

विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा, तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के

0: हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: आवो बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
0: आवो बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: सेवा भावी निस्वार्थ चुन
0: सेवा भावी निस्वार्थ चुन
1: सरपंच।

0: साथ निभाना है
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच तुम सबको साथ निभाना है
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच तुम सबको साथ निभाना है
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच तुम सबको साथ निभाना है
0: घर से पंचायत तक
1: घर से पंचायत

0: हम सबको ऐसा अभियान चलाना है, आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत की।
1: गांव में किते किते और का काम हुज्जे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: 100 साल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: चंदनी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
6: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हम तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
5: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
6: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, ये जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत

0: है सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पे तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है, और उपलब्ध संसाधनों के आधार पे जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए, और क्रियान्वयन मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है, विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं इसमें हम जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पर कैसे काम किया जाए, कि देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है ये सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं किस आधार पे कहां पहुंचना है, ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गांव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को, जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजनाएं ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गांव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जो नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है, और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों को क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं, और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पर किसी भी काम को करने के लिए ये तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए, और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के, तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है, और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की जा सकती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
3: पंचायत की।
2: गांव में किते किते और का काम हुजे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
2: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
3: ग्राम सभा की।
2: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है, और आपने
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो। हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है? ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी। अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए नाली का काम ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभाएं होती ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है साहब, हमारे घर में शौचालय बनवाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्याएं देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में। आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
5: हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49।
1: तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: वो पढ़ रहे हैं जो फिल्में हैं, जो अखबार में नहीं है। इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं।
1: इरादे रोज बनते हैं मगर

0: मैदान में गंगा जमुनी तहजीब है, उसको किस अंदाज में हमारी एक कोशिश है। गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं,
1: गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं।
0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं,
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं। झंडा तिरंगा हाथ में लेके

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ तौर पर डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों। आज हम जो है कटिवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनक रोग है उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कटिवर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, चूर्णिलासिता तथा उक्ता या जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण, यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिलासिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है, और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है, और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदु रोमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें, मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक, यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए मैम?
1: जी वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उकता या ग्लानि रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं, जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से। और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वर्गीय फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.25 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिन और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालैक्सिन और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
0: ये मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाएं तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए?
1: बीज उपचार देखिए आजकल मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम को उनकी लागत भी कम होती है और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
0: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका
1: जी
0: ध्यान रखना
1: जी जी
0: चाहिए।
1: जी
0: और
1: जी
0: अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो? साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक खाने की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी भाई,
0: इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं
1: बिल्कुल भाई,
0: इस क्षेत्र में।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो
1: जी
0: वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इन
0: जी
1: बातों
0: शुरुआत
1: को।
0: से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है, जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर
1: बिल्कुल
0: देता है। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोग जनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोग जनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोग जनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोग जनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मैम,
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं हैं, आप एक्सपर्ट हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसीलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
1: जी,
0: जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम, एक

0: चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर
1: जी
0: देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर
1: जी
0: खरबूज और तरबूज की
1: जी
0: पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन
1: जी
0: आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां, मतलब ये?
1: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि
0: जी
1: भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है। दूसरी
0: जी
1: चीज ये है वहाँ रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा

0: पपीता के भीतर पपी तनखों सूखे पत्तन को ना तोड़वें। कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कि कद्दू, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी को प्रकोप तापमान बढ़ने से दिखाई दे रहा होगा। अतः इसे बचाव हेतु किसान भाई डाइजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आसमान साफ होवे पे छिड़काव कर लेवे। गर्मी के मौसम को देखत भाई किसान भाई नींबू वर्गीय पुराने पौधन के तनन में चूना में ब्लाइट टॉक्स मिला के लेप कर लेवे ताकि धूप से तने को कोनो क्षति ना पहुंचे तथा सिंचाई को काम भी कर लेवे। किसान साथियों अब बात करत हेंगे पशु बकरियां और मुर्गियन के बारे में। सो आवे बारे 5 दिनन के दौरान अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना को ध्यान में रखत भय किसान भाई पशुओं को खुले में बिल्कुल ना छोड़ भय तथा गर्मी से बचाव हेतु उचित व्यवस्था उनके लाने कर लेवे। दुधारू पशुओं को छायादार स्थान पे रखवे और दिन में 2 से 3 बार ताजा पानी जरूर पिलावें। संगई में इनको संतुलित आहार संगई संगे 50 ग्राम खनिज लवण और 20 ग्राम नमक जरूर खुवावें। दिन को अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना को ध्यान में रखत भय मुर्गी घरन को खिड़की दरवाजे पे दोपहर के समय 11 बजे से लेकर 5 बजे तक के लाने गीलो यानी बोरा जो रहेंगे उनको भिगो के 4 बजे के बाद ईखो हटा देवे और 11 से 5 बजे तक ईखो खिड़कियन पे लगा देवे। तो जो जानकारी हम आप तक श्रोताओं पहुंचा रहे थे कृषि परामर्श जो जानकारी आप तक जा रही थी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से रेडियो बुंदेलखंड पे प्रसारित करी जा रही थी। नमस्कार।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने मौसम आधारित जानकारी को सुना। ये जानकारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से दी जा रही थी। और अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलियान से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बताइएगा हमारे इस नंबर पे। नंबर हमारा 9219207049। और आप अगर चिट्ठी के माध्यम से अपना पत्र भेजना चाहते हैं पत्र व्यवहार का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: देखें आप,
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप,
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक, तन मन की हानि हो भारी हैरानी।

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।